0: அப்பா என்ன பாட சொல்லி வாஸ்கு டிவி போக்குற இடம் நீக்கே அவதார மாவுத்த
1: கொச்சை பரி லைலை கொஸ்கு டிவி போக்னோனி பிட்டி ஆப்னே டிவி பிபியோ அனி பனவுன ஜனல் லாகே கொடி பனவுனி புக்கா உலாட்ட ஓயினே
0: তেতি কুড়ামা পনেন চিন্তা করন পরছ তো সদর মুকাম চরিকোট বাট চরি ঘ্যান জানে বাট মা রয়কো আমরাই চৌধুরী ইলেকট্রনিক্স মা লই যাও তে হাত তিম্র বিগ্রে কো টিভি মাত্র হই না কি মোবাইল ঘড়ি সবাই পনে আলছনে সকি গনে
1: এ ওরে तीसु भाई म पनि तेते तिर लागि हाल्छु नि होइन त
2: अब आउनुहोस् हाम्रै चौधरी इलेक्ट्रोनिक्समा 32 इन्च देखि माथिको एलईडी किन्दा डिस्काउन्ट सितैमा
3: यहाँ फ्रिज डी फ्रिज एलईडी एलसीडी टिभी मोबाइल साउन्ड सिस्टम सपोर्ट मूल्यमा पाउनुका साथै सबै प्रकारका टिभी मोबाइल र अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरू मर्मत गरिन्छ। यसका साथै विवाह गोष्ठी सेमिनार व्रत बन्ध र अन्य कार्यक्रमका लागि साउन्ड सिस्टम भाडामा पनि पाइन्छ।
4: टिभी मोबाइल र अन्य इलेक्ट्रोनिक सामान मर्मत गर्ने ट्रेनिङको पनि सुविधा छ। यसमा विशेष गरी 5 जनाको समूह बनाएर आएमा 1 जनालाई छुटको पनि व्यवस्था गरिएको छ।
5: प्रोप्राइटर नरेन्द्र चौधरी चौधरी इलेक्ट्रोनिक्स चरीकोट चरीख्याङ। थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9844391042 र 9844061814।
6: तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज।

मनोरंजन साहित्य और कला। संस्कृति पर्यटन और विकास का लागि जनपक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।

सयों रेडियो, हजारों रेडियो कर्मी र करोड़ों नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIM।